0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की

0: सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: 6:08 a.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहाँ HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: This program is brought to you by
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ
4: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड
7: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
8: FM 100
9: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकनीक
5: एंड सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
5: and
7: Tabal family mixture line umrah par jaye
2: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
8: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
9: FM 247365

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. To aaye polio workers ki har dastak ka jawab dein aur har muhim ke dauran apne bachchon ko polio se mehfooz banaye.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: 100 FM.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab wahan HBL.
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki Takneek
1: and
3: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
1: and
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
1: and
5: Tabal Family Mixture laye Umrah par jaye
1: and
0: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।
6: Pakistan humse hai, hum acche to Pakistan acha, to aao ehd kare ki jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
9: FM 247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In chote kadmon mein kal ke khab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहाँ HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
3: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
4: And
6: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: And
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
8: Tabal Family Mixture laye, Umrah par jaye.
4: And
0: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
9: Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: Let's celebrate
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शौबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शौबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: किसने कहा था पैसे

0: Pam pam pam param pam pam.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: 100 FM
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
5: 100 FM
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ
1: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
1: एंड
4: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: खवातीन और हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जब ये जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by
1: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 24/7/365

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: This program is brought to you by
4: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें. جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: Only music, no RJ talk.
9: This is FM 100.
10: Come on.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: Like us on facebook.com/FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon. This program was brought to you by
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247 365 FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिंसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है. चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें. हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें. अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें. होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें. हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे. तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं. याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है. तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है. वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: 100 FM.
4: हाय फ्रेंड्स, I am Ikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: पाकिस्तान में बर्ड सेफ हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है. रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने बर्ड सेफ अकाउंट से महरूम हो रहे हैं. इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे. अगर आपका बर्ड सेफ हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में बर्ड सेफ को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है. आइए देखते हैं बर्ड सेफ हैक कैसे होता है. पाकिस्तान में आमतौर पर बर्ड सेफ हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके. आपको बर्ड सेफ या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें. बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है. लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं. बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है. याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता. ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें. साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें. अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था. व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा. ये कोड दर्ज करें. ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है. अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें. 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर. इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें: सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल. अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो. सिम कार्ड سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: FM 24/7/365

0: ऑल राइट जी, सो वी आर बैक अगेन और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल विद मी फातिमा खान एंड वी हैव कुकिंग एक्सपर्ट रिदा आफताब। तो जी इतला के लिए अर्ज है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो रिदा से जो भी रेसिपी आपको पूछनी है वो आप जल्दी से पूछ लें और बता दें कि क्या पूछना चाहते हैं आप रिदा आफताब से, क्योंकि फिर अगर ये वक्त निकल गया तो रिदा से आपकी मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे, सो काफी टाइम लगेगा, इसलिए बेहतर है कि आप पूछ लें। अच्छा भाई, तो आलिया वकील कहती हैं कि मैं आप लोगों का जजाक अल्लाह कह रही थी और ये पूछ रही थी कि कबाब को फ्रीज कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हर कबाब फ्रीज हो सकता है सिवाय आलू के कबाब का। आलू के कबाब आप बनाकर जब फ्रीज करेंगे तो उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता, वो बिल्कुल वो पानी छोड़ देते हैं। बाकी चिकन के, बीफ के, मटन के, जो भी आप कबाब बना रहे हैं आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। पहले आप उसको ट्रे में रख दीजिएगा, ट्रे में रख देंगे जब आप उसको तो वो बर्फ बन जाते हैं, उसके बाद आप उसको निकाल के पॉलीथिन बैग्स में डाल देना, तो इस तरह से आप सालों साल रखें कुछ भी नहीं होता। ठीक है,
0: हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। रेडी आपको रिदा ने बता दिया है। हमें फौजिया मूसा मैसेज करती हैं, कहती हैं गुड आफ्टरनून, प्लीज मेथी की रेसिपी बता दें।
1: किसके
0: पता नहीं क्या पूछ रहा है, हमारी लिसनर्स आजकल आधी चीजें टाइप कर रहे हैं और आधी नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं अभी इन्होंने मेथी पूछी है, मीठा पूछा है दोनों की बता दें। रिदा
1: कौन पूछ रहा है?
0: फौजिया मूसा। तो फौजी अगर आप हमें सुन रही हैं तो प्लीज आप मेंशन कर दें कि आपने किसकी रेसिपी पूछी है, तो हम आपको बता देंगे। तो अभी हमारे पास कुछ वक्त मौजूद है, आप अपने मैसेज को वापस हमें रीसेंड कर दें और बता दें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो भी लिख रहे हैं भाई हमें जरा तसली से लिख के बताएं ताकि हम आपसे आपकी रेसिपी जो है वो शेयर कर सकते हैं।
1: पता है क्या होता है, वो उस वक्त जल्दी में लिख लेते ना बात, मेरे से भी कई दफा ऐसा होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बात कुछ और कुछ कुछ भी लिखा।
0: हाँ ये होता है, बिल्कुल होता है।
1: और एक तो आईसेट भी वीक है तो बच्चे कहते हैं आपने क्या ये लिख दिया, अभी आपने क्या लिख दिया, तो ये जरा सा एक दफा
0: पता नहीं चल रहा होता।
1: हाँ, हाँ। करें ना कि क्या लिखते हो, कुछ लिखो कुछ जो हमारे
0: टाइपिंग
1: में कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है,
0: वो ऑटो करेक्ट की वजह से वैसे हाँ। भी कुछ और लिख दिया जाता है, आप लिख कुछ और रहे होते हैं वो आ कुछ और जाता है, तो उससे बेहतर ये है कि भाई आप जो भी लिख रहे हैं वो तसली से हमें बताएं, हम मौजूद हैं यहाँ पर आपको आपकी पसंद की रेसिपीज बताने के लिए। खैर इसी के साथ साथ जो है वो हमने कहा कि चलो जरा मजीद रेसिपीज की जानिब नजर डाल लेते हैं। दीदी आजकल चूरोस का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आपने ट्राई किया है इसको?
1: क्या जी
0: चूरोस?
1: हाँ मैंने भी बनाए थे एक दफा, लेकिन वो थोड़ा सा उसको बनाना क्या कि आप रेगुलर बना रहे हैं तो सही है, लेकिन वो कभी सही बनते कभी नहीं भी बनते, इसलिए
0: उन्होंने वापस यही भेजा है। आई थिंक ये कोई मेथी की रेसिपी पूछ रही है, मीठे की पूछ रही है, वी वर वेरी कंफ्यूज इन दैट। तो रदर मैं तो कह रही हूँ मीठे की कोई रेसिपी बता दें।
1: क्या पूछ रही, मुझे बताए कौन सा अलग फौजिया?
0: मीठे की रेसिपी बता दें आपने, कोई भी मीठा बता दें।
1: मेसू पाक तो नहीं कह रही?
0: नहीं नहीं, बस जस्ट ही लिखा है।
1: अच्छा मीठे का देखिए, आजकल आए हुए आड़ू बहुत अच्छे आए हैं, पीचेस बहुत अच्छे आए हुए, मैंने उस दिन भी बनाया था, बड़े मजे का बना था। इस तरह से जैसे आपने आधा किलो आड़ू ले लेना, उसको धो के आपने छिलकों के साथ उसको स्लाइस में कट कर लेना। अब आपने क्या करना है, आधा किलो आड़ू के लिए आपने क्या करना है, चीनी लीजिएगा आधा कप, उसको आपने डाल देना है फ्राई पैन के अंदर, और एक खाने का चम्मच आपने उसमें मक्खन डाल देना है। तो चीनी को आपने इस तरह से कैरमलाइज कर देना ब्राउन कलर की, जब वो ब्राउन कलर की होगी तो उसमें आपने पीचेस डालने और चूल्हा बंद कर दीजिएगा, और उसके बाद उसको आपने अच्छी तरह से उसके ऊपर कोट करते जाना, तो वो सारा वो जो कैरमल बना होगा वो उसके ऊपर कोट हो जाएगा, उसको आपने एक साइड पे रख देना है। अब आप क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा एक लीटर दूध, दूध को चूल्हे पे पकने रखना, उसके अंदर आपने क्या करना है आधा कप चीनी डाल देना, एक लीटर के अंदर आधा कप चीनी डाल देना, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस डाल देना, और उसके बाद आपने क्या करना है आप ले लीजिएगा चार खाने के चम्मच या कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर, वो आपने घोल के डाल देना है। अच्छा वो आपने घोल के डाल दिया और चम्मच चलाते रहना, चम्मच चलाते रहना, जब देखिएगा वो गाढ़ा हुआ चूल्हा बंद कीजिएगा। अब पूरा एक पैकेट क्रीम का लीजिएगा, इसको ठंडा कर लीजिएगा और क्रीम को अलग से व्हिप कर लीजिएगा, क्रीम जब अच्छी फ्लफी सी हो जाएगी अब दोनों को आपने मिक्स कर लेना, दोनों को मिक्स कर लीजिएगा, थोड़े से बादाम लीजिएगा, बादाम को आपने फ्राई करके ठंडा करके फिर उसको आपने कूट लेना,
0: ठीक है।
1: अब आप क्या कीजिएगा, जब आप जिस डिश के अंदर आपने डालना है तो पहले एक लेयर वो कैरेमल वाले जो आपने पीचेस जो रखे वो डालेगा, ऊपर आपने वो कस्टर्ड वाली लेयर दिएगा, उसके ऊपर आपने फ्राई किए हुए बादाम डालेगा, फिर उसके ऊपर आपने एक और लेयर दे के आखिर में पीचेस डाल देना,
0: ठीक
1: है, और उसको ठंडा कर देना, जितना ठंडा होगा उतने मजे का बनेगा, तो ये ट्राई कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ साथ जरीनूर कहती हैं कि बाल बहुत गिर रहे हैं, कोई ऐसी चीज बता दें भाई।
1: देखिए बालों का तो पहले भी मैंने कहा था जब हमारे बाल कुछ बहुत कमजोर हो जाते हैं तो वो घिर जाते हैं, उसके बाद नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि बाज़ दफा हम अपनी खुराक जो है वो सही तरह से उस पर तवज्जो नहीं देते, कमजोरी की वजह से भी बाल जो है घिरना शुरू हो जाते हैं। बेहतर तरीका यही है कि आप बालों का ये करें, ऑयलिंग जरूर करें, आप मेथी दाना ले लें, आप उसको मेथी दाने को जो सरसों का तेल इस्तेमाल करें या कोकोनट का तो ऑयल इस्तेमाल करें, उसके अंदर वो मेथी दाना डाल के आप उसको रख दें, ठीक है। बॉर्डर बना के मैं तो रख लेती थी पहले, तो खैर बहुत करती थी, अब नहीं करती, तो उसके अंदर उसका सारा जो मेथी दाना है उसका असर सारा उसमें आ जाता है, ठीक है। अब एक प्याली के अंदर आपने निकालना है वो ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा आप ले लीजिएगा ये फ्रेश एलोवेरा, वो बाजार वाले ना लीजिएगा, वो आपने उसमें डाल देना है। एक दो विटामिन ई के ऑयल वो डाल दीजिएगा, विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो डाल देना और अपने बालों में लगा लेना। उसके बाद घंटे बाद, दो घंटे बाद, जितनी देर आप रख सकते हैं उसके बाद आप बाल वॉश कर लें। ये आप 15 दिन रेगुलर आप करें, देखना इंशाल्लाह ताला आपके बाल अच्छे हो जाएंगे।
0: इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा रीता, उसी के साथ मुझे भी एक और बात याद आ गई बालों के गिरने से कि रीता अभी आपने कुछ दिनों पहले बताया था कि हाथ और पैरों को अच्छे से साफ करने के लिए और एक अच्छे ग्लोए के लिए क्या हाइड्रोजन इज इम्पोर्टेंट?
1: नहीं, जो हम जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर वगैरह, हाँ। सलोन वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा मैनीक्योर पेडीक्योर करते हैं, तो उसमें वो जो लोग अपनी वो अपनी प्रोडक्ट तो बताते नहीं कि क्या इस्तेमाल करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए क्या है कि आप हाइड्रोजन मिलता है जो बाजार से 50-60 रुपए की बॉटल मिलती है, ठीक है।
0: ओके
1: आपने क्या करना है, जैसे 2 से 3 लीटर पानी लेना है, नीम गर्म पानी लीजिएगा, उसमें आपने टेबल स्पून के जितना 2 से 3 टेबल स्पून आपने शैम्पू डालना है, 1 टेबल स्पून आपने भर के इसमें हाइड्रोजन का डाल देना है, ठीक है, हाइड्रोजन डाल देना। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने कोई भी अच्छी सी क्रीम लेके पैरों की अच्छी तरह से मसाज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने वो गर्म पानी के अंदर आपने क्या करना है, उसको पैरों को भिगो के रख देना, जिस तरह ठीक है हम बैठ जाते हैं ना आधा घंटा 15 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा नीम गर्म। उसके बाद ब्रश से आपने अच्छी तरह से उसको धो लेना है, अच्छी तरह से ब्रश मार के, तो आप देखना ऐसे नेल्स आपके साफ चमक जाएंगे, बिल्कुल पैरों में से सारी मैल निकल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पांव को आपने ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद अगर आप इस पर थोड़ा सा चाह रहे स्क्रब करना, थोड़ा सा चावल का आटा ले लीजिएगा, बलाई ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देना, तो इससे सारा फिर दोबारा से आपने स्क्रब की तरह करके फिर एक दफा उसको वॉश करके कोई क्रीम लगा के सॉक्स पहन लेना, आपके पांव सॉफ्ट भी हो जाएंगे, साफ भी हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं अभी कितने उससे मैनीक्योर पेडीक्योर करा के आए हैं आप।
0: ऑल राइट, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, मैं तो आपके साथ मौजूद हूँ, रिदा आफ्ताब को करते हैं खुदा हाफिज।
1: चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कॉल्स का, SMS का, इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्राइडे मुलाकात होगी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: FM 100's time check. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
4: अजान जोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। कराची और उसके मजाफात में अजान जोहर का वक्त हुआ चाहता है।

Assalam o Alaikum Pakistan and Assalam o Alaikum everyone. This is me Fatma Khan and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabki? Kaisa guzar raha hai din? Aaj hai kisi ka chutti ka din aur aaj hai kisi ke kaam ka din. Kisi se waqt guzar nahi raha hai aur kisi ko lag raha hai ki ji waqt bahut tezi se guzar raha hai. Koi apne kaam ko enjoy kar raha hai, koi chutti mein apni neend puri kar raha hai, koi nashte ki taiyari kar raha hai aur koi dopahar ka khana kha raha hai aur koi abhi tak sokar utha hi nahi hai. तो भाई कैसा गुजर रहा है आप सबका ये दिन हमें जरूर बताएं और इसे बताने का तरीका है कार हम आपको बताएंगे जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत को करेंगे कायम जो कि होती है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ जी हां क्योंकि प्रोग्राम का बाकायदगी से जो आगाज है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ तो लेट्स बिगिन

0: तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकलीफ
4: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111178 37।
5: facebook.com/fm247365 fm247365।

Yes, my friends, तो हो चुका है प्रोग्राम लर्न स्टैंड स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो अब जबकि आगाज हो ही चुका है तो क्यों ना आपको बताया जाए तरीका एक कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जी इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, की एच आई लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि स्टेटस हो गया है वहां पर अपडेट। तो आप वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं और अपने हाल हवाल बता सकते हैं और आप सबकी जिंदगानी कैसी चल रही है आप लोग हमें ना ये भी बता सकते हैं। और हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि जी आप सबकी जिंदगानी जो है वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन तरीन चल रही हो और अच्छा गुजर रहा हो आपका छुट्टी का दिन। जैसे कि हमने जिक्र किया कि कोई आराम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और अल्लाह का शुक्र तो हर पल हर दम करना चाहिए। लेकिन द गुड थिंग इज दैट एंड द गुड फैक्ट इज दैट कि कराची का मौसम आज काफी हद तक बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बहुत चिलिंग वेदर है लेकिन यह है कि बादलों का आना जाना लगा है, यानी कि कभी तेज धूप और कभी थोड़ा अबर, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। और कराची का दर्जा हरारत 33 है जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 35 है। तो कुछ कमी आई है 26 सितम्बर को, देर है दुरुस्त है, बस आगे भी अच्छी खबरें ही हमें सुनने को मिलें कि जी हाँ मौसम जो है वो मजीद बेहतरी की जानिब जा रहा है ना के मजीद बुराई की जानिब, क्योंकि जी अब कराची वाले मजीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते क्योंकि जो अगस्त के महीने को हमने एक्सपीरियंस किया जहां पर एक चादर ओढ़ने की नौबत आ गई थी, वहां पर भाई सितंबर ने जो है ना वो बड़े सितम गिराए हम लोगों पर और गर्मी ही गर्मी हर जानिब आपको मिली। बारिश का एक आसरा दिया जो कि पूरा ना हो सका लेकिन गर्मी की बात ना। अच्छा मजे की बात क्या है कि मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती है, वैसे भी कराची जो है वो कोस्टल सिटी है तो यहां पर ना चीजें मतलब प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा सही होती भी है और नहीं भी होती, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिटी है कराची। लेकिन द मजे की बात इज दैट के गर्मी पड़ने वाली है और हीट वेव होगी और ये 7 दिन के टेन्योर में होगी और ये सब, ये खबरें कभी गलत क्यों नहीं साबित होती जबकि बारिश की, अच्छी हवाएं चलने की या फिर जो है वो मौसम की बेहतरी की या सर्दी के जल्दी आने की, ये तमाम खबरें आपको हमेशा गलत साबित होती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक वाहिद गर्मी की खबर है कराची में जो कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी गलत साबित नहीं होगी जी, एट एनी कॉस्ट उसने आना ही आना होता है। तो ये क्या होता है कि जब तमाम मौसम की खबरें गलत साबित हो जाती हैं तो ये गर्मी की खबर गलत साबित क्यों नहीं होती कराची वालों के लिए? तो ये है मेरा सवाल महकमा मौसमियात से भी और अल्लाह ताला से भी मैं पूछना चाहूंगी कि गर्मी इतनी आती है और ये खबर सही हो जाती है और मौसम के अच्छे होने की खबर क्यों ऐसी हो जाती है? खैर भाई ये तो अल्लाह ताला की ही बात है, हम तो एक प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं या चीजें पढ़ रहे होते हैं देख रहे होते हैं लेकिन वही वाली बात है खुदा ताला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये सारी चीजें बस एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, हम प्लान कुछ कर रहे होते हैं, हम सोच कुछ रहे होते हैं, हम देख कुछ और रहे होते हैं लेकिन होता कुछ और है। और सिर्फ मौसम में नहीं हमारी अपनी जिंदगानी में भी ऐसा होता है कि हम प्लान कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और सोचा हुआ होता है जो कि बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है और इसी तरह चल रही होती है जी हमारी जिंदगानी। सो जी हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं या पर 3636 पर। तो अपनी हाजिरी लगाएं और हमें बताएं किस वक्त आप में

ओके ऑल राइट जी. सो इसी के साथ साथ जो है आप हमारा सवाल जो है वो ये है कि जी आपके लंच में इस वक्त क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, हमें जरूर बताएं, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में जिक्र लंच ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी. तो लंच में आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, कुछ सोचा है या फिर ये सोचा है कि क्यों ना जो रात का सालन है उसी को लंच में खाया जाए. अब वैसे अक्सर औकात ये जो सालन होता है या कबाब होते हैं इस तरह की चीजें जो दोपहर से ज्यादा सुबह नाश्ते में प्रेफर की जा रही होती हैं कि चलो जी पराठों के साथ जो है वो सालन खा लेते हैं या तली हुई नान खा लेते हैं, डिपेंड्स. वैसे ज्यादातर मुझे लगता है नाश्ते में प्रेफरेंस होती है या समटाइम्स जो है वो लोग इसे लंच में भी खा लेते हैं. और मेरे ख्याल से ख्वातीन को बड़ा सुकून मिलता है कि जब उन्हें ऐसा मौका मिले कि यार कुछ लंच में ना आज कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी सम लंच, तो ख्वातीन को मिल जाती है जी एक दिन की छुट्टी, जो कि हर दफा नहीं मिल पाती, कभी कभी मिल पाती, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन जब भी मिलती है ना भाई ख्वातीन बड़ी खुश हो जाती हैं, बल्कि वो कहते हैं ना जी दिल बाग बाग हो जाता है. तो आज हमारे लिसनर्स में भी कोई ऐसी हैं जिनका दिल बाग बाग हो रहा है क्योंकि आज लंच तैयार है या नहीं हमें जरूर बताएं, लेकिन आपके लंच में क्या है हम इस मैसेज का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार. ऑल राइट जी, और इसी के साथ साथ हमारे पास जरीनूर का मैसेज आ चुका है. जरीन कहती है कि आज खाने में चिकन कोरमा और मैकरोनी है. वाओ दैट्स लवली. और इसी के साथ साथ हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन. और कहते हैं कि जी आई एम गुड, यस ऑफिस से. कहते हैं दिन अच्छा गुजर रहा है, यस जिंदगी भी अच्छी गुजर रही है, जबरदस्त हो गया जी. कहते हैं आलू अंडे हैं आपके लंच में, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. अच्छा मेरे लंच में आज कीमा है, आलू कीमा, बट मैं कीमे की कोई फैन नहीं हूं, आई डोंट ईट कीमा, विच इज वेरी वेरी बैड, और ये अच्छी बात नहीं है. लेकिन तो मेरे ख्याल से ना मेरे लिए कुछ ऑल्टरनेटिव लंच बनेगा. सो मोस्ट प्रोबेबली द प्लानिंग इज दैट कि शायद कोई छोले का सालन आज मेरे लंच में हो. सो ये मेरे लंच में है और ये लंच की ताज़तरीन सूरत हाल. और अब आप लोग भी बताएं कि आपके लंच में क्या है. ट्रैक शामिल करते हैं, फिर वापस आकर आपको बताते हैं कि भाई आज कौन कौन से दिन जो है वो मनाए जाते हैं.

तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे। नसीर खोजो ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और आप भी मैसेज कर सकते हैं आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, या फिर आप 3636 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे जहां पे कह रहे थे कि अल्फाज ही नहीं है तारीफ करने के लिए। ओ माय गॉड, तो वाकई में कुछ लोग आपकी जिंदगी में कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और वाकई में समटाइम्स आप उनकी तारीफ बयान करने के लिए ना बड़े वो हो जाते हैं कि यार क्या इतने अच्छे इंसान या इतने अच्छे शख्स की तारीफ करते हुए ना अक्सर औकात आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि भाई उनकी तारीफ में क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए या क्या चुनाव किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करना उस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो तारीफ जो है ना वो बहुत अच्छी लगे और एक एप्रिसिएशन का सबब भी बने। तो तारीफ करने से कभी ना आपने कतराना नहीं है। या अक्सर औकात लोग, जैसे कि मैं बहुत दफा जिक्र करती हूँ, इसलिए कहती हूँ ताकि लोग अपने अंदर ये तब्दीली लाएं, ये लोग तारीफ लोगों की इसलिए भी नहीं करते कि अगर मैंने इसकी तारीफ कर दी ना तो यार इसके ना बड़े स्टाइल हो जाएंगे या ये बड़ा चढ़ जाएगा या बड़ा ये हो जाएगा। तो ना किसी को भी ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो अच्छा है या ये वो ये कर सकता है, ये सोचकर ना हम बहुत सारे लोगों की तारीफ नहीं करते। और जरूरी नहीं है आपसे बड़े हैं, आपसे अच्छा बेहतरीन काम करते हैं, आपसे नीचे लेवल पर हैं, जो भी है, बिकॉज आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारे लोग नजर आते हैं। मैं ये कहती हूं कि ये शुरुआत आपको हमेशा अपने घर से शुरू करनी चाहिए, घर से आपके बच्चे को अच्छे काम करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, आपकी बेगम आपके लिए मजेदार सा खाना बनाती है उनको अप्रिशिएट करें, कोई बाहर आपकी हेल्प करता है उसकी मदद करें, कोई आपको एक कप चाय का ला के देता है उसकी शुक्रगुजार हो। मतलब बेसिकली अगर आप ये सारी चीजों को देखें तो हमें लगता है ना कि भाई क्या बड़ी बात है, अगर ये कोई काम कर रहा है तो उसका काम है। लेकिन जिस दिन वो नहीं आता आप उस दिन रियलाइज करते हैं कि नहीं यार ये काम तो उसी का है। हमें करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज देयर ओन वर्क बेटर। तो बेसिकली अगर आप तारीफ करें किसी की तो वो काम और शौक से और बहुत दिल से करता है, और तारीफ जरूर करनी चाहिए ताकि भाई सामने वाले की जो है वो हौसला अफजाई हो। और हौसला अफजाई करने में हमेशा हम करते हैं कंजूसी, तो अच्छे लफ्जों का चुनाव करें और सामने वाले की दिल खोल कर तारीफ करें ताकि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। तो तारीफ करने में कभी इंसान को कतराना नहीं चाहिए जी। ये है मेरा अहम पैगाम आप सभी के नाम। तो इसी के साथ साथ जो है जी वो वक्त भी कम है और मुकाबला भी सख्त है, एज आई टोल्ड यू बिफोर के प्रोग्राम जो है वो अख्तितामी मरहल के काफी करीब भी जा रहा है, बल्कि जा रहा नहीं है जा चुका है। तो इंशाल्लाह मेरी होगी आपसे मुलाकात ऑन मंडे। अंटिल एंड अनलेस रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें और बहुत सारा पानी पिएं, गुस्से से करें अल्लाह हाफिज, यानी कि गुस्से को करें टाटा बाय बाय कुछ टाइम के लिए। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कभी गर्मी की वजह से, कभी जो है वो ट्रैफिक की वजह से, या वैसे ही नॉर्मली लोगों का मूड बड़ा खराब रहता है, तो गुस्से से आपने करना है परहेज क्योंकि ये है मुजरे सेहत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड bless you all. See you all on Monday. Bye bye.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
4: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
5: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा।

0: गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
1: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
4: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 3 p.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे ना बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय शौकतानम कराची की तकलीफ एंड
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: किया गया। FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ।
1: मुलाकात सच्ची सच्ची दस कितों सिखियां ने ढोला,

0: वाह वाह वाह, खूबसूरत अरशद भाई, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत है, बहुत खूबसूरत. अच्छा वैसे आपकी लैंग्वेज तो मतलब मदर टंग कहा जाए तो आपकी सिंधी है, सिंधी जुबान आपकी. अच्छा उर्दू आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही. अच्छा फिर पंजाबी सराइकी, मतलब इस पर इतना अबूर आपको क्यों, पंजाबी या सराइकी में लाजमी जेर जबर से बड़ा फर्क पड़ जाता है.
1: जी जी जी, जी.
0: तो ये इतने अच्छा मतलब ये
1: एक्चुअली मैं सिंधी पढ़ा हुआ हूँ और मेरी पैदाइश रोड़ी की है,
0: रोड़ी
1: डिस्ट्रिक्ट सक्कर, और रोड़ी का भी एक छोटा सा इलाका रेलवे कॉलोनी लोकोशेड रोड़ी.
0: अच्छा लोकोशेड
1: जी, मेरे वाले साहब रेलवे में थे तो वहां की मेरी पैदाइश है और वहां मुख्तलिफ लोग रहते थे कॉलोनी के अंदर, बंगला बोलने वाले भी रहते थे, बिहारी बोलने वाले भी रहते थे, मद्रासी भी,
0: रेलवे के मुलाजिम जो होंगे सारे.
1: जी जी जी, रेलवे के गोरे भी रहते थे. तो मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 65 साल पहले जब मैंने होश संभाला था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ. तो वैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उनका ताल्लुक गुजरात से है.
0: अच्छा.
1: गुजरात पंजाब, लाला मुसा गुजरात,
0: पंजाबी.
1: तो मेरे वालदेन जो है वो अराई फैमिली से उनका ताल्लुक. जी जी. और सिंधी चूंकि मैं सिंध में पैदा हुआ, गुट्टी जो है वो सिंध की है,
0: सिंध की गुट्टी है,
1: सिंध में पढ़ा हूँ और सिंध ने मुझे बहुत इज्जत दी है और इसलिए मैं अपने नाम के साथ जो है सिंध का नाम इसलिए भी जोड़ता हूँ कि मेरी इज्जत में इजाफा होता है, क्योंकि मैं पहले मुसलमान हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं सिंधी हूँ. ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ.
0: क्या बात है.
1: हाँ, अपनी मट्टी को नहीं भूलना चाहिए.
0: नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: हकीकत है. वाह. अच्छा जब भी तू देखे ना, वो अब सिंधी से पहले फिर आ रही.
1: जी जी जी.
0: वो अब देखो पंजाबी भी उसमें आ गई.
1: देखिए सिंध में बहुत सारे अराई हैं जो आबाद है वहां पे, और आपको अराई जो है ना, जब वो सिंधी बोल रहा होगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये अराई पंजाबी अराई है,
0: पंजाबी अराई
1: है. वो आप कहेंगे नहीं नहीं आए सिंधी आप. और मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सिंधी से मेरा स्टार्ट है.
0: आपका स्टार्ट
1: पाकिस्तान टेलीविजन पे मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था तो सिंधी में किया,
0: सिंधी में किया था बिल्कुल.
1: और पहला गाना भी मेरा जो हिट हुआ था वो सिंधी का हुआ था.
0: अरशद महमूद इतने बड़े बड़े बाल, अरशद महमूद का क्या स्टाइल था, अरशद महमूद का. वो तो जवानी के दिन जवानी के रहते हैं, क्या बात है,
1: जवानी के दिन जवानी क्या याद करा दिया.
0: जवानी के दिन ना छेड़.

0: उसी दवा पे रहते हैं, तो क्या ये तरीकाकार जो लोग फॉलो करते हैं ये ठीक है या नहीं?
1: अच्छा देखिए, दवाई को, एक ही दवाई को बहुत साल तक फॉलो करना और आप उस पर अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर एक दवाई अच्छी है जिसने आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया हुआ है, अगर आप उसको बहुत अरसे बहुत सालों तक भी खा रहे हैं तो उसकी कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। आप अगर आपका बीपी कंट्रोल है तो हमारी तरफ से दवाई बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब आप रेगुलर उसको कंटिन्यू लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। कुछ टेस्ट आपने जैसे साल में या 6 महीने में, जैसे किडनी फंक्शंस हैं या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नमकियात के टेस्ट हैं, वो चीजें आपका डॉक्टर एक पीरियोडिक इंटरवल से आपके चेक करता रहता है। तो वो बस अगर आपके रेस्ट सही आ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो फिर लॉन्ग टर्म एक ही दवा यूज करने में कोई नुकसान नहीं।
0: ओके, ऑलराइट। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम हाई ब्लड प्रेशर की बात इजी डे के साथ। ये प्रोग्राम वैरिक फार्मास्यूटिकल के तावन से पेश किया जा रहा है। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है, जहां पर आप लोगों तक मालूमात फराहम की जा रही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में क्या शरह है ब्लड प्रेशर की? कितनी ज्यादा केसेज हैं? किस नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है?
1: एक WHO का एस्टिमेट है 2024 का, वो उसके मुताबिक एक अंदाजे के हिसाब से पाकिस्तान में 42% रेट है, समझे आप, तकरीबन आधी पॉपुलेशन, यानी कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में इसकी प्रिवेलेंस बहुत हाई है,
0: बहुत हाई है। सही बात है, दिस इज टू मच। अच्छा डॉक्टर, उसी के साथ अगर हम बात करें कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर मौजूद है, तो बाकी जो घर वाले हैं, यानी कि जैसे अगर माँ बाप को है, जो बच्चे हैं, तो क्या उनमें बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है कि ये जो है वो 90% इनको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, या फिर दिस इज नॉट दैट मच पॉसिबल?
1: नहीं, एज अ रूल नहीं है। आपका जीन्स डिफरेंट होते हैं, हर बंदे का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप को ब्लड प्रेशर था तो बच्चों में आना ही आना है, इस तरह नहीं होता। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आप जेनेटिकली रिस्क पर हैं और साथ में आपका लाइफस्टाइल भी खराब है, आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको चांस और ज्यादा चांस है कि आप ब्लड प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। बनिस्बत अगर यह कि सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है लेकिन आप बहुत अच्छा अपना डाइट और लाइफस्टाइल रख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हाई ब्लड प्रेशर डेवलप करें।
0: ओके, ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर, इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं, आजकल के टाइम में वॉक जो है वो ना होने के बराबर है। लोगों की कोशिश ये होती है कि कहीं भी जा रहे हैं तो या तो बाइक पर जाएं या तो गाड़ी में जाएं। पैदल चलने से आजकल ऐसा लग रहा है कि गुरेज करने लगे हैं लोग, तो मुझे बताइएगा कि क्या वॉक का भी कोई इंपॉर्टेंट किरदार है ब्लड प्रेशर को कम करने में?
1: बहुत ज्यादा किरदार है, वॉक एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठीक है। जितना आप अपने आप रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में, अगर आप लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज कर लें, आप जहां पे पैदल चल के जा सकते हैं वहां पे आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, तो अगर ये चीजें करते हैं, रेगुलर अपनी वॉक रखते हैं, कम से कम आधे घंटे की रोजाना करते हैं, बल्कि आप जितना बढ़ाएंगे उतना ये हार्ट के लिए अच्छा है। तो ये तो बहुत एक हार्ट फ्रेंडली आदत है, अगर चलने की हो तो बिल्कुल इसको इनकरेज करना चाहिए, स्पेशली हमारी यंगर पॉपुलेशन में जो बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है और बहुत देर कंप्यूटर या गैजेट्स के सामने बैठना है, तो उनमें ये आदत बिल्कुल जो है वो इम्प्लीमेंट करानी चाहिए वॉक करने की।
0: ये एक इम्पोर्टेंट तरीन चीज है जो आजकल लोगों ने छोड़ दिया है बिल्कुल।
1: को स्टार्ट करते हैं तो यू फील बेटर, बंदा एक दफा बस एक किक की देर होती है, अगर आप किसी को इनकरेज करें, आप स्टार्ट करें और एक दफा वो स्टार्ट कर लेते हैं, देन स्टार्ट फीलिंग बेटर ना, तो बहुत अच्छा। जो लोग आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आप जैसे आप उनसे पूछे तो दे फील बेटर, मतलब जब एक्सरसाइज नहीं करते तो वो डाउन फील करते हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे, दूसरा ये कि एक्सरसाइज के मेंटल इफेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, फिजिकल के साथ साथ आपका मेंटल भी रिलैक्सेशन होता है, आपके जिस्म में कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपका मूड भी स्टेबलाइज करते हैं, तो बेनिफिट्स आपके मेंटल हेल्थ पे भी हैं, आपके फिजिकल हेल्थ पे भी हैं, तो उसको तो स्ट्रांगली इनकरेज करना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक है, तो आप जरूर वॉक करें। बाकी तमाम लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा वॉक करें, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा डॉक्टर, वॉक में भी जैसे अगर हम वॉक की एक्सरसाइज की बात करें ना, तो अक्सर आप किसी को मोटिवेट करें तो लोग ना अचानक से बड़े जज्बाती हो जाते हैं और पहली ही दफा में जो है वो एक एक डेढ़ घंटे की वॉक लोग शुरू कर देते हैं। सो आप ये भी हमारे सुनने वालों को बताएं, क्योंकि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर भी बात करें, तो कितनी देर की वॉक करें, कितने दिन करें, क्या करें, किस तरह करें?
1: अच्छा देखिए, स्टार्ट तो हमेशा ग्रेजुअली होता है। एक बंदा इसको चलने की आदत ना हो और वो एक ही गो में चाहे कि मैं दौड़ लगा लूं आधे घंटे की, दैट्स पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। इसलिए कि वो जाहिर है मसल्स पर आपकी एक करना शुरू कर देंगे, आपकी मसल्स को इतनी आदत नहीं होगी, तो आप हमेशा ग्रेजुअल स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल पेस पे स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली आप अपनी पेस बढ़ाते जाएंगे। अपर लिमिट इसकी कोई नहीं है, आप जितनी बढ़ा लें, मिनिमम लिमिट 25 मिनट्स अ डे है, 5 डेज अ वीक, कम अज कम इतनी करनी ही चाहिए, लेकिन आप बढ़ा रहे हैं 45 मिनट्स,

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमनगर, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100।
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
9: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू हैं।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड
4: कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
3: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
4: 100 FM.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
5: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
7: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
8: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
1: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
3: and HBL islamic safar hajj mein aapka khidmat guzar.
4: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड
4: तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
3: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड
4: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
3: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
8: FM247365
9: FM 100
10: 31 साल FM 100 आपकी आवाज
11: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान
12: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: 100 FM.
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
3: 100 FM.
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
5: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
7: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
8: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
1: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
4: and HBL islamic safar e hajj mein aapka khidmat guzar
9: FM 100 Like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Summer Sunshine. The best music. The best music.
1: FM 100.
0: Surf. Chill. Hot weather. Hot music. Hot DJ. FM 100. The Sound Factory.
2: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
1: 100 FM.
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
1: 100 FM.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
1: 100 FM.
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत और ज़वाबित लागू हैं.
1: 100 FM.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत और ज़वाबित लागू हैं.
8: This program is brought to you by
9: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
8: And
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
8: And
10: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
8: And
11: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
8: And
5: HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.
6: And HBL islamic, safar e haj mein aapka khidmat guzar.
1: 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
13: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
1: FM 100.
14: like us on facebook.com/FM247365.
15: FM247365.
16: Club mixes.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by
1: Sarsabz Nitro Falls ko laga aur jeet ta ja.
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
3: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
4: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And
5: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
6: And HBL Islamic. Safar-e Hajj mein aapka khidmat guzar.
7: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू हैं।
12: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: तबाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
13: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू हैं।

0: बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
1: Club mixes.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain. वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: 100 FM
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
6: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
7: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
9: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं. मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
9: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
8: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
9: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
8: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
7: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
11: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
12: FM 24/7 365 FM 24/7 365
13: Club Mixes.

0: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: Tabal family mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 02131118275 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code bataein aur lucky draw mein shamil ho jaein. Tabal family mixture laein, umrah par jaein.
2: Kamethi chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai, to kisi ka kal bhejta hu wala excuse aur kisi ko reminder par reminder chahiye. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
3: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.
4: We don't talk anymore.
5: Well, well, well. Welcome back to the Episode Radio.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: A Bal Family Mixture ke saath har safar khas. Umra likhe 02111182725 par WhatsApp kare. Pack ke andar maujood code bataye aur lucky draw mein shamil ho jaye. The Bal Family Mixture laye, umrah par jaye.
3: Committee chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai, to kisi ka kal bhejta hu wala excuse aur kisi ko reminder par reminder chahiye. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्वागत आनंद कराची की तकलीफ.
3: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
5: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
6: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
7: हमारी जिम्मेदारी है.
8: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: FM247365.
0: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365.

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
2: लाइक अस ऑन facebook.com FM 247 365.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाए। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफातशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफातशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्ती तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: facebook.com/fm247365
7: 407-365.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki Takbir.
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर जागती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। FM 100, like us on facebook.com/FM247365

0: This program is brought to you by
1: शौकत खानम कराची की तकनी।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मुमान है। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहरेज। मुनशियात खरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजो मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: स्टेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्तलि नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, काम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247365

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365